0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण

0: उपभोक्ताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं
0: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई जो अत्यंत सार्थक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
1: आप आगे लिखते हैं आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है
0: जी।
1: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं
0: जी।
1: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल दिव्या पटेल दीपांजलि पटेल दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं
0: विमलेश जी अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है
1: जी।
0: ऐसे शानदार ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
1: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं प्रिय विमलेश जी और अजीत जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी
0: जी।
1: वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है
1: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: जी तो श्रोताओं इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
0: जी
1: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
0: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओ परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
1: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
0: जी तो अजीत जी अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहाँ वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
1: जी हाँ श्रोताओं वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
0: जी
1: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
0: जी
1: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
0: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
1: तो श्रोताओं आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
0: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी क्या परमवीर चक्र केवल

0: थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
1: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
0: और इसे प्रदान कौन करता है?
1: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
0: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन। जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो आप सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
2: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
3: मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
2: भालू ने कहा,
4: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
2: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
4: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
2: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
4: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
2: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो

0: तभी तो
1: हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
2: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
1: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
2: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
1: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
2: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: इनका तू है?
2: क्या करूंगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगीं। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।
2: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
5: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
6: हा? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ,
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
5: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
6: हाँ?
5: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
6: और क्या
5: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
6: हाँ?
2: देखो, इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा, तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनाथ के जंगल से?
5: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा, तू कौन है, कहाँ से आई है?
2: अब आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
5: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
5: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
6: अरे

0: चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो चलो चलो,
0: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं चलते।
2: इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्शद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: கேட்ட பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள். நேர்களே, ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்திய அலை 1197 கிலோஹெர்ட்ஸின் இன்றைய ஒலிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. எமது அடுத்த ஒலிபரப்பு மீண்டும் நாளை காலை மணி 5:50 இனிதே ஆரம்பமாகும். எமது வழக்கமான மற்ற நிகழ்ச்சிகளை பண்பலை 102.6 மெகாஹெர்ட்ஸில் தொடர்ந்து கேட்டு மகிழலாம். வணக்கம் நேர்களே.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
2: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: निखिल और गौरा, आप दोनों को गुड इवनिंग।
2: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मैं गौरा।
1: थैंक यू निखिल एंड वंस अगेन सिद्धार्थ, वेलकम टू द प्रोग्राम। लिसनर्स, लेट्स बिगिन विद अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1.5%, सेंसेक्स स्लंप्स ओवर 1000 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 22,250. GST Council removes arrest power of tax officers, raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees, and global crude oil prices surge over 4%.
2: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई। मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल।

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और

0: पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इंफोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
1: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले, एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे? और दूसरा, ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाज़ार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाज़ार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए। लेकिन हाँ, शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाज़ार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है। चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, क्रूड ऑयल के प्राइजेज अभी भी बहुत ऊँचे स्तर पर हैं। पूरी दुनिया में अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है। कल RBI ने भी रिवाइज़ की है, अपवर्ड रिवाइज़ की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाज़ार पर जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाज़ार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हाँ, बाज़ार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाज़ार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल मैं कहूँ इस तरह के, और जो और ख़ासकर ये सब बाहर में देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है, ये जल्दी सोल्यूशन होगा ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है, या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूँगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप ज़रूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
1: राइट, इनफैक्ट टेकिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यू नो सिद्धार्थ, व्हेन वी से दैट व्हेन एनी टाइम वी इन्वेस्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, वी थिंक इट्स अ फॉलिंग मार्केट एंड इट विल बिकम अ राइजिंग मार्केट, एक्चुअली अ फॉलिंग मार्केट कुड फॉल फर्दर, कुड स्टे देयर, टेक्स टाइम टू बिकम अ, सो आई थिंक एनीबॉडी हु इज बाइंग इन अ फॉलिंग मार्केट शुड एक्चुअली बी देयर एटलीस्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड then one would really expect markets to immediately rebound.
2: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52 week low now, lot of them almost in on their 1 year lows, but the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said first invest in very, very small tranches, very, very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of a return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind, plus also the levels going further down is not ruled out at all.
1: Right, so you know we have global crude oil prices, they're rising, that's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
2: See, basically, what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net importers of energy.
1: Right.
2: And our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary

0: regulatory conditions also is that people start pulling out from the equity market because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
1: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने FIIs के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं DIIs हैं, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
0: नहीं निखिल, देखिए अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं अब वो बहुत बड़े तादाद में बाज़ार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आएँ या वो म्यूचुअल फंड रूट से आएँ, तो वो एक और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है, हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाज़ार के गिरने के. और जहाँ तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूँगा. देखिए FIIs के पास का जो एक जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है वो होता है प्रॉफिट इज़ देयर मोटिव. तो वो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दूसरी बाज़ारों में ज़्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं. दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट्स दुनिया भर की बाज़ारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं.
1: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट दिखी. हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया.
0: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है. मतलब इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो देर इज़ जनरल फॉल इन द मार्केट.
1: आगे बढ़ते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है. इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 3.5% गिर गया. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ. एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे संसार का जो मार्केट है आज गिरावट के दौर से ही गुजर रहा है.
0: हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एक अनिश्चितता है. क्रूड ऑयल उसका बड़ा कारण है. क्रूड ऑयल के जो भाव में तेजी है, साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो महंगाई का प्रेशर बना हुआ है, तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक सभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमको बाजार में दिख रहा है. और ये ऐसा हुआ जो आपने बोला कि हमने देखा कि साउथ कोरिया की मार्केट में भी गिरा, जबकि अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स या कंपनीज, उनके जैसे सैमसंग में कंपनी का नाम भी लूंगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी मार्केट में वहाँ गिरावट देखने को मिली.
2: Moving on to our next major story, the GST Council has removed the power of arrest of tax officers and raised the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. The punishment, whether a fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing the media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, the Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold.
3: The Council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores. Anything below 5 crores, no prosecution. And reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000. Support for exports and small sellers.
2: The finance minister also said no rate changes have been made in the GST Council meeting and the rate structure is settled.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for

0: make it easy for an honest taxpayer to claim input tax which he has paid.
1: Right. So that means if there's a legacy issue with the chain or with the thread, who is held actually? Is the actual person really being held for that?
0: Yes. Yeah. And I would say another very big announcement, which again, I think what the Honorable Finance Minister today said is that they are going to introduce from the central government side for a certain turnover, above certain turnover, people doing businesses above certain turnover, a faceless assessment. So you do not need to go and, or your tax person representative does not need to go to any tax office or a tax appear before a tax official. They would introduce a faceless assessment, as is being done very successfully on the income tax side, already being done in the customs side. So I think this again is
1: that's a huge move.
0: Yeah, I think probably it's a very, very big announcement and would go a long way to, because there are a lot of always we have grievances that people are harassed, all those kind of things. So I think we are moving towards that, and GST almost now 10 years. So I think this is today's meeting, I think has moved. It's a big leap forward in terms of easing the processes, simplifying the rules.
1: Right.
2: Siddhar, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, आपसे पूछना भी चाहूँगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं, तो ये क्या जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद और लंबित मामले चले आ रहे हैं, उनको तेजी से निपटाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि निखिल आपने अगर अभी जैसा हमने सुना भी, वित्त मंत्री जी ने बोला कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं जहाँ पे टैक्स पेमेंट जो नॉन टैक्स जो जहाँ पे टैक्स नहीं दिया गया है, 10,000 रुपये तक के नोटिस दी गई है, जहां पे डिफॉल्ट जो है 10,000 रुपए तक का है, तो उन वो नोटिसेस भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। और बिल्कुल, जब अगर प्रोसिक्यूशन की लिमिट बढ़ेगी या 10,000 रुपए तक आपको अभी तुरंत नोटिस इशू हो जाती थी अगर उसके, तो वो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है, एक तो टैक्स ऑफिशियल का भी काम घटेगा, क्योंकि वो भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि जहां एरियाज जहां पे ज्यादा उनको लोगों को फायदा देने की जरूरत है, टैक्स पेयर सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है, साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी कंप्लायंस बर्डन उसका कम होगा जब इस तरह की चीजें।
1: इन फैक्ट द मोर वन इज लिसनिंग टू यू, आई कैन एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ साइज ऑफ रिलीफ अक्रॉस, यू नो, सेइंग ओके, वी हैव बीन होल्डिंग आवर ब्रेथ, दिस इज हाउ इट इज।
0: And I would also add, Gaurav, one thing more for our listeners, that companies which are now paying for health and life insurance plans for the companies, for their employees, they can also claim input tax credit. Plus also the telecom towers and the pipelines outside their factories installation, for that also now input tax credit is being brought in.
1: Right.
2: Okay. आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की। श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले, साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, तमाम कोशिशें इसी चीज़ को लेकर हैं।
0: हाँ, इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा। और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे उसका हम जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी ज़िंदगी को रोज़ छुएगा और छू रहा है, तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेज़ी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
1: राइट, एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट द अर्लियर वी स्टार्ट द बेटर।
0: या बिकॉज आई थिंक यस, दो वी हैव एजुकेशन, ऑब्वियसली एवरीबडी इज, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर हैव नाउ एक्सेस टू एजुकेशन, स्टिल पीपल आर बींग चीटेड ऑन दीज लाइन, सो आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप।
1: राइट, एब्सोल्युटली। इन आवर नेक्स्ट स्टोरी, इंडिया हैज जॉइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड 13 अदर इकोनॉमीज इन साइनिंग अ जॉइंट मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट कॉलिंग फॉर मेजर्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन एंड

0: திரைகணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया. ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है. यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं. इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के 4 जवान घायल हो गए. ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. 2 जवानों को गंभीर चोट आई है.

0: பார்க்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है.
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबन करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है. यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं. इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के 4 जवान घायल हो गए. ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. 2 जवानों को गंभीर चोट आई है. भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया. तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और धरुण मान्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है. विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है. इस दौरान आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

0: है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। ये फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है. सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा

0: का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital.
1: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
4: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no.

0: நிறைவு பெற்றது இனிய ராகம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के जरिए सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर साझा स्वामित्व को बढ़ावा देना और विकास के परिणामों में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य

0: सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance to taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital.
1: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
3: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Mr. Modi also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat. Prime Minister Modi said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance and that the Digital India campaign has been at the core of the country's digital transformation, with the mobile phone placed at the center of

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை உத்திரமேரூர் எஸ் செல்வம் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். மேல்சாணாங்குப்பம் எம் செல்வகுமார் அவர்கள் தவில். இன்னும் சில நொடிகளில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे. कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है. इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है. सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए ये बात कही.
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है. फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है. एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है. जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा.
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की. वस्तु और सेवा कर GST परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में GST परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से

0: बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF सहायक प्रोफेसर या PhD के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इस महीने की 28 तारीख तक किया जा सकता है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी संस्थानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रमुखों से दिव्यांगजनों के लिए समावेशी और सुलभ शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आयोग ने संस्थानों के प्रमुखों को समान अवसर प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का और दिव्यांगजन विद्यार्थियों को दिए गए प्रवेश, शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती और छात्रवृत्ति तथा छात्रवृत्ति से संबंधित निर्धारित सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। उधर क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय अखिला। The GST Council during its 57th meeting in New Delhi approved a series of measures to ease compliance with taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. Union Communications Minister Jyotiraditya M. Sindhya has said that India is advancing towards an end-to-end telecom value chain, taking a lead in shaping its rules, equipment and innovation. He made these remarks at a high-level CEO roundtable titled The Sovereign Inflection and the Future of Telecom during the 10th India Mobile Congress in New Delhi. Mr. Sindhya emphasized the importance of a partnership-based approach between the government and industry in shaping the next phase of India's telecom journey. He further highlighted the country's expanding digital ecosystem and telecommunications' growing role as a foundational enabler for digital public infrastructure, emerging technologies, innovation, and economic growth.